चाँडै म सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय कलाकार किरण तामाङ स्याङ्बोको नयाँ खान्दोके सेलो एल्बम लिएर आउँछु सगुनफोङ।

स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

स्वर बल बहादुर वाइबा, प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।

0: Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganeshwar Kathmandu.
1: तथा शाखा कार्यालय नलम्ची लक्ष्मी बैंकको माथिल्लो तला फोन नम्बर 011-40-1157 शाखा प्रबन्धक लक्ष्मण विष्ट सम्पर्क नम्बर 9852-73-16-1 9861-01-505 कुपिला अधिकारी 9823-26-54-79 सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बिमा गरौँ।

0: Hey, fresher. You, chocolate fresher. All this joya che stuff. मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: फ्रेशर, जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हो। डू यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस।
0: गुड, बिकॉज़ आई थिंक यू रियली रियली क्यूट।

स्वर बल बहादुर वाइबा प्रतिमा अरियाल, शब्द लय बल बहादुर वाइबा। बल बहादुर वाइबा युट्युब च्यानल मार्फत उपलब्ध छ, सुन्न र हेर्न नभुल्नुहोला।